श्री चंद जिया दे आउन दी जदो खबर मिली है ना गुरु रामदास महाराज जिया नू परिवार नू लै करके गुरु सिखा नू लै करके भी गुरु नानक महाराज जिया दे पुत्र आए ने उन्हां नू आदब सत्कार दे नाल लै के आउणा है। पुराणिया समयां विच इदां ही हुंदा सी, कोई रिश्तेदार आउंदा सी ते उहनू अड्डे तो लैण जांदे, कोई जांदा सी ते अड्डे तक चढ़ाउण जांदे संगत जी। इह प्रेम दीआं निशानियां सन। और इधर धन गुरु रामदास महा

0: महाराज बैठी हुई सी संगत संगत जी एदा ही ते सचे सतगुरु गुरु रामदास महाराज प्रेम दी निगाह नाल अपने गुरसिखां वल वेखदे ने। गुरसिखां वल वेख के आखण लगे, भाई गुरसिखो तुसी मैनू जानो वध प्यारे हो, बड़े मेरे प्यारे हो।
1: मनुख जन्म दुलभ को तारे,
0: ए जेड़ा मनुखा जीवन है ना, एक गल याद रख लियो, ए बड़ा ही बेशकीमती है। कबीर, मानस जन्म दुलंब है, होए न बार बार, ज्या बान फल पाके भोए ग्रह बहर न लागै डार। जिवें टुटे हुए रुखा नालों फुल मुड़ के वापस नहीं लगदे, एदा ही जेड़ा मनुखा जीवन है, जदो लंघ गया सो लंघ गया, मुड़ के औखा ही प्राप्त हुंदा है। धन गुरु रामदास जी आखदे, तुसी मेरे प्यारे गुरसिख हो, मनुखा जीवन प्राप्त होया, इस नू सांभ लवो।
1: हर सिमरन बिन ब्रिथा ना खोवहो,
0: भाई गुरसिखो हरि दे सिमरन तो बिना वेखियो किते बिरथा ना चलिया जावे। तुसी सिमरन ना करो, एदा ना होवे के मनुखा जीवन प्राप्त होया है सिमरन करन वास्ते। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरा कित न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ए जेड़ा मनुखा जीवन प्राप्त होया है ना, वेख्यो किते सेवा सिमरन तो वांझ

लिव लाई। दुनिया अंदर ओ बंदा वड भागा है जिन्हें अपनी सुरती गुरु चरणा नाल जोड़ी है, जेड़ा परमात्मा दी याद दिल च वसा के बैठा है, वरना बहुते धनवान बंदे बहुती चिंता विच डुबे वेखे ने। ते एदा भाव यह नहीं कि जिस बंदे कोले धन पदार्थ नहीं ओ बंदा सुखी होवेगा। पातशाह कहिंदे जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिदे कोले लोड़ तो वध ओनू भी चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे परमंता, जिदे कोल थोड़ी है जिदा गुजारा ही चलदा है ओदे मन दी भटकना दिन रात इसे विच ही भटक रही है कि मैं किवें कुछ इकट्ठा कर लवां, किवें कमा लवां, किवें मैं कारोबार स्थापित कर लवां। कहिंदे दोहों व्यवस्था तेजो मुक्ता सोई सुहेला भालीऐ, जेड़ा इन्हां दोवां अवस्थावां तो उच्चा है ना ओ बंदा संसार अंदर सुखी है, क्योंकि सुख परमात्मा दे नाम विच है, ओदी इबादत ओदी भगती विच है। सुख ना ही रे हर भगत बिना, भगती तो बिना सुख नहीं है। दुनियावी सहूलतां तन वास्ते हो सकदियां ने, लेकिन जेड़ा आनंद है ओ मन दा है, सुख मन दा है। सुख दा संबंध तन नाल नहीं हुंदा। जे मन खेड़े विच है, मन खुश है ते बंदा सुखी है, पर जे मखमली गलीचिया उते रहन वाला, वड्डे घरां च रहन वाला, सोने चांदी दे भांड्या च खाण वाला बंदा कवे कि मैं तन दियां सहूलतां ते जुड़ी बैठा हां पर मेरे मन नूं दिन रात चैन नहीं, ते ओ चैन गुरु चरणा दे नाल जुड़ के ही प्राप्त होना है। सो आओ आपां वी पातशाह दे पावन चरणा दे नाल जुड़ना करिए, मन बिरती एकाग्र करिए, हथ जोड़ के सीस झुका के भावना प्रेम सहित आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह जी मेहरामत करन, समूह संगत दी हाजरी दर प्रवान होवे, चढ़दी कला तंदरुस्ती नामदान गुरसिखी जीवन दियां दाता मेरे पातशाह जी बख्शिश करन। एक बार सारी संगत कह दियो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। कल दे दीवाना विच आप गुरु की संगत ने सरवण कीता सी कि भारत दी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वल्लों SYL नहर दा टक ला के नहर दा काम शुरू करवाया गया। श्रोमणी अकाली दल ने मोर्चा ला दिता, लेकिन इसे लौंगोवाल राजीव गांधी दे विच समझौता होया जिसनू राजीव लौंगोवाल समझौता आख्या जांदा है। अकाली दल दी सरकार बनी, सुरजीत सिंह बरनाला पंजाब दा मुख्यमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री बनिया नहर दा काम जोरां शोरां दे नाल शुरू हो गया। इंज कह लईए नहर दे काम विच हाथी लंघ गया पूछ रह गई, भाव यह कि लगभग 90% नहर दी उसारी दा काम मुकम्मल हो चुका सी। लेकिन पंजाब दे सुहिरद चिंतित जागरूक लोग जिहड़े सन ओह इस गल वास्ते जद्दोजहद कर रहे सन कि पंजाब दे पाणियां दी राखी कीती जावे, पंजाब दे पाणियां नूं बचाया जावे। इसे तहत ही भाई बलविंदर सिंह जटाणे ने 23 जुलाई 1990 अपने नाल 3 होर साथी जिन्हां विच भाई हरमीत सिंह पाहुवाल, भाई जगतार सिंह पंजोला अते बलबीर सिंह फौजी नूं नाल लैके 26 सेक्टर दे अंदर दूसरी मंजिल उत्ते स्थापित कीते SYL दे दफ्तर दे विच जाके मुख चीफ इंजीनियर सी जिहड़ा MS सीकरी ओदी हिक च गोलियां मार के SYL नहर दा काम पूर्ण तौर ते बंद कर दिता, मुकम्मल रोक ला दिती। पानियां दा राखा बनिया भाई बलविंदर सिंह जटाणा। चेते रखो ए संघर्षी योधे ने, लेकिन मेरी कौम नूं याद उदो आउंदी है इन्हां योधियां दी जदों कोई दुनियावी तौर ते गाउण वाला बंदा इन्हां योधियां दा नाम अपने गीतां च लैंदा है। जिवें सिद्धू मूसे वाले ने यह नां लिया ते सानूं वी याद आ गई, असीं वी उहदा दिन मनाउणा शुरू कीता, असीं वी उहनां दी फोटो अजैब घर अंदर स्थापित कीती। जिवें हुण भाई जसवंत सिंह खालड़े उत्ते एक फिल्म बनी, इहदा भाव इह नहीं हुंदा कि शायद कौम दे प्रचारक ढाडी जां कवीशर इन्हां मरजीवड़ियां दी, इन्हां कौमी जरनैलां दी, योधियां दी गल नहीं करदे। जिहड़ी स्टेज उत्ते तुसीं सरवण कर रहे हो, इस स्टेज उत्ते अक्सर ही इन्हां कौमी परवानियां दी गल चढ़दी कला दे नाल कीती जांदी है, पर कई वार साधन इन्ने सीमित हुंदे ने इन्हां गुरु घर दे प्रचारकां दे कोल, उन्हां दी गल जिहड़ी है ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰੋਤਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ 100-150 ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਾਤ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੀ

गुरु सुहरी प्रसाद जी इतनी आदि प्रवान करनी सतगुरु मेरा अमृत करन सबदा गाव्या सुनिया थाए पौन सब नरों करो सिखी सिद्धिक भरोसा नाम भी दात बख्शन दासियां दा समा इत्थे समाप्त है। आप संगतां ने इसे तरह सज के पंथ प्रसिद्ध कीर्तनीए भाई हरजोत सिंह जी जख्मी जिन्हां ने आप संगतां नाल गुर शब्द द्वारा सांझ पाउणी है बहुत विद्वान कीर्तनीए हन ते इन्हां दा जिहड़ा अंदाज है प्रातन ख्याल प्रातन शैली है ते प्रातन शैली वास्ते बहुत मेहनत की लोड़ पैंदी है। इन्हां नूं पिता पुरखी दात प्राप्त हुई है बड़ी कृपा है सतगुरु जी दी। आओ इन्हां पासों गुरु की बाणी दा हर जस कीर्तन सरवण करिए दासियां नूं इत्थे बुलाओ फते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: अगर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
1: है।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कोमो की पेशेंस का टेस्ट मत।

0: परमात्मा दी इबादत विच करतार दी इबादत विच जोड़िया लाया ते एक गल जेड़ी उन्हें कही कहन लगे काम क्रोध ने परसना ते की सी के गुरु तेग बहादुर जी दे अंदर कदी एदा फुरना भी नहीं उठिया। कहन लगे कारण के गुरु तेग बहादुर जी दे आरंभक जीवन विच 44 साल का ब्रह्मचर्ज मिलता है, क्योंकि जेड़ा बंदा बंदगी करदा है वो मेरी इस बेनती नूं समझेगा। ग्रिस्त इंद्रियां दे विषय भोगण दा नाम नहीं, जिदे अर्थ आप अजकल करने हैं कि गुरु साहब ने सानू ग्रिस्ती नूं क्या सब कुछ माफ। वो भाई सजनो ग्रिस्ती दा अर्थ मरदे दम तक इंद्रियां दे सुख भोगने विषय वासना विच प्रवृत्त होण दा नाम ग्रिस्त नहीं। ग्रिस्ती तां ओ वे कि जिहड़ा अपने घर विच रह के भी इन्ना संजम करे कि 44 साल तक उन्हां दे जीवन विच ब्रह्मचर्ज की झलक पैंदी है। हुण जे असी इहदे अर्थ, क्योंकि असी हर गल दे कई वारी अर्थ उल्ट कर लग पैंदे आ जी इह तां गुरु जी ने बाणी च होर भी शब्द कहे इहदे अर्थ की ब्रह्मचर्ज दे नहीं, उहदा हठ नहीं है, उत्थे धक्का नहीं, उत्थे नाम विच रस ही इन्ना आ चुका है कि जेड़े लोग काम दे रस विच परविरत ने ओ की जानन, जेड़ा नाम दे रस विच परविरत है ओनू ही पता है कि नाम दे रस वर्गा होर संसार विच कोई रस नहीं। सतगुरु जी उन्हां दे अंदर खिन मात्र भी ये फुरना नहीं, ते बाणी विच हजूर ने जेड़ी ग्रिस्ती दी परिभाषा दित्ती ओ है ही है। कई वारी असी विचारे सो गिरखी जो निग्रह करे, ग्रिस्ती होवे जेड़ा अपनियां इंद्रियां ते काबू पाए संयम विच जिंदगी जीए। सो गिरखी जो निग्रह करे, जप तप संयम भीख्या करे, देते एक निग्रह किवें होवेगा, संयम किवें रखा जाएगा, हट करके जेड़े लोग संयम रखते ने उन्हां नूं तां बाबा जी ने बाणी विच कहा, कहन लगे बिंद राख जो तरीए भाई खुसरे क्यों ना परमगत पाई। इस नुक्ते नूं देखो, सो गिरखी जो निग्रह करे, पर किवें निग्रह करे, किवें इंद्रियां ते काबू पाए, वो तां काबू पाएगा जप तप संयम भीख्या करे, जिदे कोल जप है, जिदे कोल साधना है, जिदे कोल नाम दी कमाई है, जप तप तो बाद ही संयम है। ते जे संयम पहला वर्तन लग जाएंगे, खिमा करियो कई वारी कुछ बंदे संयम दा खोखा देण वाले तिलक दे नजर आउंदे। यही कारण कि ज्यादा थावां ते बाणी विच संयम शब्द जप तप तो बाद वरत्या है। जप तप संयम भीख्या करे, पुन दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीह। हजूर गुरु तेग बहादुर जी ने बचन किया कि साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते एनस भागो, सुख दुख दोनों सम कर जाना और मान अपमाना। हुण आ शब्द सुख नूं ते दुख नूं एक बराबर जाने ते नाल मान और अपमान नूं, सुख नूं बर्दाश्त कीता जांदा है पर दुख बंदा स्वीकार नहीं करदा, मान नूं सत्कार नूं स्वीकार करदा है पर अपमान अंदरों लैण वास्ते तैयार नहीं, अपनी उस्तत नूं कबूल करदा है पर अपनी निंदिया एदे तो बर्दाश्त नहीं हो सकती। सतगुरु गुरु तेग बहादुर असी तां सिर्फ बाजे ते शब्द गा सकने हां ते बाहां खला के प्रमाण दे के कथा कर सकने हां, पर यह किन्ना उच्चा संतुलन है जिथे सुख भी असर नहीं करता पिया ते दुख भी असर नहीं करता, जिथे मान भी असर नहीं करता ते अपमान भी नहीं करता, जिथे उस्तत भी अंदर नूं थिड़कन नहीं देंदी ते गुरमुखो जिथे निंदिया भी अंदर उदासीनता नहीं आउण देंदी। हुण इत्थे सिर्फ दोख बचन खोर, सुख और दुख, मान और अपमान, उस्तत और निंदिया, हजूर दे सामने उस वक्त दे लोकां ने की अपमान करन दा यतन नहीं कीता, सिर्फ दोक प्रमाण दे देना, क्योंकि जो गुरु जी ने कहा उन्हां जिंदगी च खंडाया। गुरु तेग बहादुर जी ते गोली चली, आप सारे जानते हो वो कादी खातर चली, जदों पता लग गया कि गुरु तेग बहादुर सम्राट गुरु ने गुरु तेग बहादुर जी ही इस तख्त दे वारस ने मक्खन शाह ने कह दिता गुरु लादो रे। ते उस वक्त संगता ने पिटावां रखियां ढेर लग गए ते शीए मसंद नूं कह के धीरमल ने गोली चलवा दिती ते गुरु तेग बहादुर जी दा परम आपा की से जेड़ा बंदा गोली चला रहे हैं ओदे लई शब्द इक्को वरतदे पैने के भले धीरमल भले जी भले धीरमल तील परमात्मा तेरा भला करे ओ धीरमल तेरे अंदर नूं शांति बख्शे। कि मक्खन शाह दे कोल असला नहीं, कि मक्खन शाह दे कोल फौज नहीं, कि मक्खन शाह दे कोल आदमी नहीं। ते जदों मक्खन शाह सब कुछ ओदे डेरे दा लुट के जो कुछ लै गया सी वापस लैके आउंदा है ते गुरु तेग बहादुर इक्को गल कहिंदे ने मक्खन शाह इस माया दे ढेर ने गोली चलवा दित्ती फिर तू वापस लैके आ जा जो कुछ लियांदे इहनू वापस कर दे। मैं इत्थे इक बेनती जरूर करनी चाहना सिख संगत चंगी तरह जानदी है गुरु तेग बहादुर कहन लगे आपां बंदगी दी इबादत दी नाम दी गल करने आ। कहन लगे जिस ढेर ने ठग लेना इहदा मतलब ये ढेर माया दा बंदगी ते प्रभाव पा गया। सतगुरु ने बाणी च बचन भी कीता है गोली चलनी। ते दूसरी मैं एक बेनती खोर करनी फिर अगा बाणी विचों हजूर दी रचना विचों सतगुरु दा बचन एक आउंदा है बाबा फरीद जी दा आ जितनी बनस्पति है इहदी हरियावल दा कारण पानी है। जदों किते मीह ना पए ते जमीन दे उपर उगे हुए जिहड़े रुख ने वो मुरझाने शुरू हो जांदे ने ते उहनां दे पत्ते सुकदे ने तने टाणियां सुक जांदियां ने। ते जे पुछिए भी रुख बड़ा कीमती सी सुक क्यों गया कहन लगे इस करके सुक गया क्योंकि इहनू पानी नहीं मिलिया पानी तो बिना सुक गया पानी मिलेगा ते जरूर हरा हो जाएगा। जेठ विच खाड़ दी लू ने सुकाया सौण विच मीह पिया ते बस दिन दोक लंघे जिथे चार चबेरे खुशकी सी साड़ा सी सोका सी ओ सारी दी सारी बनस्पति टहकन लगी खरियावल आ गई ओही फुल ओही पत्ते झूमन लग पे। पर इना कु मीह पै गया कि भादों का महीना चढ़िया मीह पई जा रहा है जेठ हाड़ विच भी सुके सन रुख सौण विच हरे हुए ते भादों विच झाती मारी वो फिर सुक गए ते पुछे उन्हें खुण की भाणा वापर गया खुण तां इन्हीं आंदियां जड़ां विच भी पानी है पानी तो बिना तां सुके हुण पानी होण दे बावजूद जिन्हें खरियावल दित्ती ए पानी दे खुंदियां क्यों सुक गए हुण कदों हरे होणगे। ते अगो गुरु जी ने उत्तर दिता कि पानी तो बिना सुके ने ते गुंजैश सी कि मीह वरसेगा ते पानी तो बिना सोका पानी नाल चला जाएगा पानी खरियावल पैदा करेगा। जेड़ा पानी दी अणखोंद करके सुके वो खरा हो सकता है पर जेड़ा पानी विच रह के सुक जाए ओदी कोई आस नहीं कि दोबारा कदी खरा हो सके। हजूर ने फुरमाया कि बाणी ते नाम दी अणखोंद करके असी कह सकने हां बंदे दा अंदर सुक गया बंदे दा अंदर खुशक हो गया बंदे दा अंदर तारकी केवल हो गया। बाणी तो बिना इंसान दा अंदर सुक जाए बाणी मिले ते खरियावल आ जाएगी भावना पैदा हो जाएगी। ते भाई सिखो जेड़ा बाणी विच रह के सुक जाए जिथे बाणी विच माया वापर जाए उन्नू कित्थों आपा जाके हरिया करांगे। सतगुरु ने बाणी विच बचन कीता कहन लगे तत्ती तोए ना पलवै जे जल टुब्बी दे जेड़ी पानी विच सुक गई धरती जिन्ना मर्जी उन्हू डोबी रखो उन्हें खरी नहीं होना। तत्ती तोए न पलवै जे जल टुब्बी दे फरीदा जो डुहागण रब दी चूरे दी चूरे जिन्ना दा बाणी तो नाम दी गल कर दिया भी अंदर सुक्का रह गया गुरमुखो केड़ी थां तो आस करने आओ खरे खो जाणगे। हजूर ने कहा आ माया सी ए प्रभता सी जिन्हें गोली चला दिती। उस तो अगे दूसरी गल चली क्योंकि भाई साहब ने कहा अज दे संदर्भ विच भी जरूर हजूर अमृतसर गए ने कि मत्था टेकन दिता गया कि नमस्कार करन दिती गई। गुरु साहब ने चार दरवाजे जिस गुरु तेग बहादुर जी दे सत्कार योग दादा जी ने गुरु अर्जुन देव जी ने दरबार साहब दी इमारत बनाई चार दरवाजे बनाए कि सारे भिन्न भेद मिटा के कोई भी सिजदा कर सकता है। पर वक्त हो जाया कि ओ लोग उस थां ते काबज हो गए जिन्हें चार चफेरे दे लोगों नू सद्दा दिता जिसने बनाया सी ओदी जोत नू ही मत्था टेकन ना दिता गया। गुरु तेग बहादुर जी नू मत्था टेकन दिता गया, दरवाजे बंद कर दिते गए ते उन्हां दे दादा जी ने स्थान बनाया ते दरवाजे बंद करने वाले कौन सन? मसंद बिरती वाले लोग ते ओ बिरती के जेड़ी केवल माया दे ढेर ते कब्जा करना चाहती सी। धर्म की गल तो बंदा प्यारे रड़े विच खलो के भी कर सकदा है। असी भुलेखे विचा कि साड़ी मैनेजमेंट आवेगी, साड़ा प्रबंध आवेगा जां फलाने दा प्रबंध है तां इन्ना कुछ होवेगा। जिन्हें धर्म नूं कमाणा है वो जंगल विच खलोता भी मंगल ला सकदा है, जिहदे कोल धर्म नहीं चेते रखो मंगल विच बैठा होया भी जंगल बना देंदा। हसूर ने बड़ा प्यारा एक बचन कह मो कह के थोड़ा जा अगे तुरना कि अपमान नहीं। जे दुनिया की नजर विच देखिए ते दरवाजा बंद करना एक अपमान पै कर देने, पर गुरु तेग बहादुर जी बाहर बैठ गए, उन्होंने सिर्फ इको गल कही ते मेरा ख्याल वो जो कही वो हकीकत कह कह लगे नह मसंद तुम अमृत सरिए। अमृत सरिए मीन्स सारे अमृतसर दे वसनीक नहीं। याद रखियो उस इलाके विचों माइया भी सन जिन्हां ने चरना ते मत्था टेक के महाराज बख्श दे ते गुरु ने उन्हां नू ए भी कहा सी माइया रब रजाइया। नह मसंद ते शब्द मसंद है जेड़ा काबज है। नह मसंद तुम अमृत सरिए, अमृत सर विच मसंदी पुना करन वाले हो तुसी मसंद नहीं। तृष्णा अगन ते अंतर सड़िए, तुहाडे अंदर दी तृष्णा ने तुहानू साड़ दिता है। चाहिदा सी तुसी अमृत सरोवर नेड़े रहिंदे ठंडे हो जांदे, पर बदकिस्मती तुहाडा अंदर झुलसदा पिया है। इत्थे भाई साहब दी एक रचना कह के भाई गुरदास जी दी सुख दुख दोनों सम कर जाना है और मान अपमाना ये सिर्फ दुखांत जां अपमान दी गल। फिर मैं सुख दी गल भी करनी चाहना कि जो गुरु जी ने कहा उन्हूं कमाया भाई, केवल टारा नहीं दित्तियां। भाई साहब भाई गुरदास जी दी रचना क्योंकि वह बाणी दे कई शब्दां दी व्याख्या अपनी रचना विच करदे, उन्होंने बचन किया है कह लगे किते थां अग लग जाए ते आदमी दौड़ के पानी वल जांदा है, जिस्म नूं अग लग जाए, घर नूं अग लग जाए, किसे संपत्ति नूं अग लग जाए, बंदा पानी वल दौड़दा है कि पानी दा प्रबंध करो अग बुझ जाए। बाहर अग लगे ते असी दरिया नदी तालाब दा पानी लिया के अग बुझाने आ, ते जेड़ा बंदा तालाब विचों पानी लैण जाए ते तालाब दियां लहरां विचों अग लग जाए उहनूं कित्थों बुझावांगे? बाहर दी अग पानी नाल बुझेगी, पर नदी विच नाव ते बैठे आ, जे नदी दा पानी अग बन लग पै भाई सिखो कित्थों आस कर दे अग बुझेगी? एक आदमी उहदे पिछे कुछ उन्हूं मारन वाले लोग उहदे दुश्मन पै गए, वह दौड़दा है ते कहिंदा ओ सामने बादशाह दा किला है, बादशाह मेरी रखवाली करन वाला है, बादशाह मेरी हिफाजत करन वाला है। जे वह दौड़ के अपने दुश्मन तो बादशाह दे किले विच जाए जिदे तो जिस्म दी हिफाजत भालदा है, जे किले विच आए कोई बंदे नू बादशाह ही सिर कलम कर देवे, जिन्ने शरण तकी उस शरण पालक ने शरण देन दी थां अपने कोल आए कोई नू कतल कर दिता, फिर किदे किले दी आपां आस करने? चोरां तो डरदा होया बंदा कदी पहुंचदा है कि राजे दे कोल इंसाफ लैण कि मेरी जेब कतरी गई, मेरे घर नू चोरां ने चोरी करके लै गए? ओ भाई चोरां दे फैसले कराण लई राजे कोल जांदा है, ते जे राजा ही जांदिया सार उस बंदे दी जेब कट लै किदों आस करेगा? तीन बचन भाई साहब ने कह ते गल उन्हां फिर खास करके धर्मशाला दी गुरुद्वारे दी कीती ते कहन लगे बाहर की अग्न बूझत जल सरता कै नाव में जो लागे आग कैसे कै बुझाइए बाहर ते भाग ओट लीजियत कोट गढ़ गढ़ में जो लूट लीजिए कहो कत जाइए चोरन को त्रास पाए शरण गए नरेंद्र मारे मखीपत जियो कैसे कह बचाइए माया डर डरपत हार गुरुद्वारे जाए तहां जो व्यापै माया कहां ठहराइए बंदा संसार तो दुखी होया गुरुद्वारे हुंदा है ते जे गुरुद्वारे विच भी भांबड़ बाली के अगे बैठे हुए ते लोकां नूं शांति कित्थों मिलनी असलियत अज एक एक संगत दे किसे भावना वाले नूं पुछ के देखो वह असलियत कहिंदे ने कि गुरुद्वारे जाईदा कि शांति नाल मत्था टेक के दो घड़ियां बैठ के कीर्तन सुनिए पर अफसोस जेड़ी अग बार बलदी पई उस स्टेज उत्ते भी आपां बाली बैठे हजूर ने कहा माया डरपत डहार गुरुद्वारे जावे ता जो व्यापै माया कहां ठहराई है हजूर ने कहा नह मसंद तुम अमृत सरिये तृष्णा अगन ते अंतर सड़िए गोली भी चली अपमान भी किया गया नरलेप ने आ दूजा पक्ष देख लीए सुख की है एक गृहस्थी जिस दा व्याह होया 32 साल हो गए ने शब सिर्फ एक नुकते ने 32-34 साल व्याह होया नु हुए ने पर घर संतान नहीं ते किते ओ पुकार करदे भी नहीं देखे सिर बंदगी कर रहे ने तात मात मुर अलख अरादा 34 साल बाद किसे दे घर विच आस है कि पुत्र जां धी ने जन्म लेना असी इंसान गृहस्थियां पुछ के देखो कि जिस घर दे अंदर व्याह तो 34 साल बाद बच्चे ने संतान ने आना होवे वो गृहस्थी अपने घर नूं किते छड़ के जाएगा अपने घर विच बैठा रहेगा इंतजार करेगा पुत्र जां धी ने जन्म लेना ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਬਰ ਜੇ ਗਈ ਕਿ ਘਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਖੁਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ 34-32 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਨ ਦਿੱਤੀ ਏਦੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਉਮਰ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ 4.5 ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਰਹੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਾਪਸ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਨਾਟ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਆਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਂਤੇ ਐਨਸ ਭਾਗੋ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰਕ ਤੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ हजूर ने फिर अगे चल के बाणी विच एक शब्द होर जेड़ा सी पढ़ने हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अर पै नहीं जांके कंचन माटी माने नै निंदिया नै उस्तत जांके लोभ मोह अभिमाना हर के सोग ते रहे न्यारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्याग जगते रह निराशा काम क्रोध जै परसै नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा। जिदे ते दुख भी स्पर्श ना करे सुख भी स्पर्श ना करे सोने का भी प्रभाव ना पे ते मिट्टी भी नजर सोना भी मिट्टी नजर आए उस तत ते निंदिया का कोई प्रभाव ना पे हरक ते सोग का प्रभाव ना पे ते काम ते क्रोध ओदे अंदर नू कदी स्पर्श ही ना करे काम क्रोध जै परसै नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जे नरको कीनी ते ए जुगत पछानी। तो गुरु कृपा की कीती जी एक किमें जुगत पहचानी किमें पता लगा इस अवस्था का उस संबंधी गुरु तेग बहादुर जी का रात वाला बचन मैं जरूर दोहराना चाहना। कहन लगे ए जुगत उन्होंने पहचानी के जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान ए जुगत उन्होंने पहचानी कि जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। पर किवें मन्या किवें ओदे नाल जुड़े इत्थे हजूर ने कहा कहन लगे भाई उन्होंने बंदगी कीती इबादत कीती सतगुरु गुरु तेग बहादुर उन्हां दा जीवन सिमरन बंदगी सूरज प्रकाश विच तां कि वी शब्द लिखे है कि गुरु तेग बहादुर जदों कीरतपुर साहब पिता गुरु जी दे सामने आउंदे सन ते चेहरा नहीं सन चुकदे। मैं विस्तार च नहीं सिर्फ जो नुकते ने ते मन मत वाले शब्द नहीं है जदों आउणा संगत विच हजूर पिता दे चरणा विच मत्था टेकना ते पिछे बैठ जाना बैराग विच प्रेम विच बिरहा विच ते जे सिखां ने पुछ लिया मात नानकी जी ने भी पुछया साईं जी पुत्र मेरा किसे नाल बोलदा भी नहीं क्योंकि भाई ये बड़ा जिहड़ा साका है ना ये कमाई तो बिना नहीं हो सकता। दिल्ली विच पता नहीं किन्ने कु लोग औरंगजेब रोज मारदा सी पर जिदन पहुंची कोई आत्मा वल हाथ पाया उदू बाद औरंगजेब दिल्ली विच एक रात भी टिक नहीं सकिया। साईं जी ना मेरा पुत्र बोलदा ना किसे नाल गलबात करदा चुप ते शांत रहिंदा ते सतगुरु ने उत्थे शब्द कहा सी नानकी तेरा पुत्र अजर नू जरन विच तुरंतर है अजर नू जरन वाला है। ते जदों कोल आए गुरु तेग बहादुर जी ने नेत्र नीवे कीते ते बां पकड़ के अपने कोल बिठा लिया कहन लगे लाल जी बेटा जी तुसी नेत्र क्यों नहीं चुकते जदों दरबार विच आउंदे हो बाहर भी देखी दा नीवी पा के रखीए हालां पिता ते पुत्र दा रिश्ता है ते अखां विचों आंसू भर के कहन लगे पिता जी जिस नूं अंदर दे औगण पता हुण उहदे सामने नेत्र नहीं चुके जांदे हुंदे। हुण गुरमुखो उह जप के अंदर दी अवस्था जिस नूं पता होवे गुरु हरगोबिंद साहब ने सीने ना ला के कहा नानकी देख तेरा पुत्र अजर नूं जरदा पिया है ते किस करके मैं कहना ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਉਸ ਜੈਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਅੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਖਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ सगल सृष्ट पै तापी चादर कर्म धर्म की जिन पत राखी अटल करी कलयुग में साखी। वो धर्म दी चादर ने जिमें गुरमुख दस रहे सन पर तिलक ते जन्यू नू खतरा सी ते अज मैं कहना चाहना कि जिस निशान नू गुरु नानक साहब ने स्वीकारिया नहीं उन्होंने कह दिता चौकड़ मुल अनाया बै चौंकै पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण तिया ओ मुवा ओ झड़ पया वे तगा गया तग कपाओ वटिए तग कपाओ कतिए ब्राह्मण वटै आए को बकरा रिण काया सब को आखे पाए खोए पुराना सुटिया पीपर पाई है होर हजूर ने परवानिया नहीं पर नौवे गुरुदेव दे कोल आए ते इस स्थान ते जिथे असी बैठे हाँ इतने ह्यूमन राइट्स मैं कल भी बेनती की इंसानी हकां दे लोक टंडोरा बड़ा देंदे ने किसे ते मुसीबत हो जाए लोग मारे जान ते टीम जांदी है देखने वास्ते कि इंसानी हकां दी खातर असी देखने आए हैं कि लोग किवें कतल कीते गए। मेरे गुरु ने कहा कि मरण तो बाद गिनतियां मिनतियां नहीं इंसानी हक ता एवे कि किसे ते मौत आवे ओनू घर तोड़ के आप ओदी मौत नू स्वीकार कर ले। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह तिलक ते जन्यू दी खातर उन्होंने शहादत का जाम पीता पर अफसोस जिस चिन्ह नू गुरु पांदा नहीं अकीदा नहीं ओदी खातर एक कैम रह जाए इनू खाक है अपने चिन्हों का पर अज उन्हां लोकां नू गुरु तेग बहादुर दे बच्चियां दे चिन्ह बिल्कुल पांदी ना उन्हां नू कृपाण चंगी लगती है ना खुले दाड़े वाले सिख चंगे लगते ने किस भुलेखे च लोग जी रहे ने। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह उन्हां दे शहादत वाले दिन आप सब इकत्र होए हो सिर्फ इको बेनती है सतगुरु ने बाणी विच बहुत कहा कि सुख मैं बहु संगी पए दुख मैं संग ना कोए जाए कह दिता सुख मैं आन बहुत मिल बैठत रहत चहु दिसके रह विपत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत नेरै। मुसीबत विच समझो जगत में झूठी देखी प्रीत अपने सुख सो ही सब लागे क्या दारा क्या मीत मेरो मेरो सब है कह तक है हित सो बांध्यो चीत अंतकाल संगी ने को ए अचरज है रीत। मुसीबत च कोई आंदा है हां दुनियादार बंदे कदी मुसीबत च नेड़े नहीं टुके पर जिस गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि सुख विच घेरे ने मुसीबत विच ही कल्ले हैं सच जानो ना ए भी व्याख्या करके दस दिती कि तेरे सुख विच विद्वान पंडता तेरे चार चपेरे घेरे ने तिलक जन्यू वेले देवी देवते भी कन्नी कतरा गए पर मैं तेनू दसा जदो तेरे ते मुसीबत पई मैं तेरे घेरे तू वेख के सुख देनु खुश हां भी इन्ने लोग तेरे नाल मुसीबत विच कोई भी नहीं पर मैं ए भी तेनू व्याख्या करके दसनी चाहना कि जदो दुख आप है अपने छड़ के चले जांदे ने पर गुरु बांह पकड़ के सिर धर दी बाजी लांदा पर कदी मुसीबत वेले छड़दा नहीं। तां ही सतगुरु ने अमृत बाणी विच ए बचन भी कहे शहादतां इउं कह लिए भाई सिद्धी गल भाई साहब सियाणे जानदे आ इस हिंदुस्तान विच बलियां तां बड़ियां सन कोई देवतियां नू बली देंदा है कोई देवियां नू बली देंदा है पर शहादत जब जे हिंदुस्तान विच प्रैक्टिकल तौर ते आया है ते ओ गुरु अर्जुन देव दी शहादत नाल आया है। सिखां विच दो तरह दी शहादत हुंदी है देखो मंजिल दोनों दी इको ही है एक सिदक ते सिरड़ वाली शहादत दूजी हथियारबंद शहादत इउं कह लिए एक शांतमई शहादत ते दूजी जुझारू शहादत। शांतमई शहादत विच गुरु अर्जुन देव जी ने शांतमई शहादत विच गुरु तेग बहादुर जी ते तीन सिख ने शांतमई शहादत विच गुरु का बाग पंजा साहब दा साका ननकाणा साहब दा साका तरन तारण साहब दा साका है शांतमई शहादत विच भाई साहब भाई मनी सिंह जी दा बंद बंद कट्टे जाण दी गल कह ते जिथे जुझारू शहादत की गल हुंदी है उथे गुरु के वड्डे साहबजादे ने बाबा दीप सिंह जी ने होर अनेक गुरु के सिख ते दोनों परवान ने शांतमई वाले ने भी अंदर दे सिर नू जान नहीं दिता ते चेते रखो जुझारू ने जदों देखिया भी ये शांतमई ढंग नाल काबू ने आया ते फिर खंडा खड़काया है। ताई सतगुरु जी दे इस घर दे अंदर बाणी विच दोनां नू बचन कह जदो शांतमई गल आई उदो कहन लगे कबीर ऐसी खोए परी मन को भावत कीन कोई अगे हाथ नहीं चुकिया मरने ते क्या डरपना जब हाथ सिंदोरा लीन ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਖੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੱਲੂ ਪਕੜੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
0: ਸਤਨਾਮ।

0: KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुरकी बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: अवतार
1: जब निर्गुण प्रसह सुपाई
0: जब शिव शक्त कह हो गठाए
1: जब आप ही आप अपनी जोत धरै
0: जब कवन निडर कवन कत डरे
1: अपन चलित आप करने हार
0: नानक ठाकुर अगमय पार
1: अवनासी सुख अपन आसन
0: तै जन्म मरण को कहा विनाशन
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
0: तब जम की त्रास कह हो किस होए
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका
0: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाते
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे
1: अपन आप ही अचरजा
0: नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा
1: जय निर्मल पुरख पत होता
0: जय बिन मैल कहो क्या तोता
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
0: जय कौन कमान कौन अपमान
1: जय स्वरूप केवल जगदीश
0: जय शल शिदर लगत कौ कीस
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
0: जय किसै भूख कवन तृप्तावे
1: कर्ण करावन करने हार
0: नानक करते का नहे सुमार
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
0: तब कवन माए बाप मित्र सत भाई
1: जय सर्व कला आपे प्रवीण
0: जय वेदक देव कहां को चीन
1: जब अपन आप उतार है
0: शगन अपशगन कहां विचार है
1: जय आपन ऊंच अपन आप नेरा
0: जय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
1: विस्मन विस्म रहे विस्माद
0: नानक अपनी गत जन हो
1: जय छल अशेद अभेद समाया
0: वहाँ कसे प्यापत माया
1: आप उसको आप ही आदेश
0: गुरु का ना ही प्रवेश
1: जय एक ही एक एक भगवंता
0: जय कौन अचिंत किस लागे चिंता
1: जय आपन आप पतियारा
0: जय कौन कथा कौन सुनने हारा
1: बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा
0: नानक आप उसको आप पहुँचा
1: जय आप रतियो प्रपंच आकार
0: गुण मैं की नो विस्तार
1: पाप कौन तह पाई कहावत
0: नरक को स्वर्ग विशावत
1: काल जाल माया जंजाल
0: मैं मोह परम पै भार
1: दुख सुख मान अपमान
0: अनक प्रकार की उपख्यान
1: अपन खेल आप कर देख है
0: खेल संकोचे तो नानक एक है
1: जय अवगत भगत है आप
0: जय पसरे पसार संत प्रताप
1: तुम पाप का आप ही धनी
0: उनकी शोभा उन्हों बनी
1: आपे कौतुक करे अनबजोज
0: आपे रस भोग निर्जोग
1: जिस भावे तिस आपन नाई लावे
0: जिस भावे तिस खेल खिलावे
1: बेशुमार अथाह अगन

मित्रंत अजंत सतरं दृणंत अनिक माया विस्तीरने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम।

0: वेदन पर ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे।
1: मनुख दिया बुनियादी मूल कमजोरियों विचों प्रबल कमजोरी अहंकार अहं मैं हां मैं हां मैं हां जिन्ने चिर तक ये मैं रहती है ये अहं भाव रहता है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है चलता रहता है। ये जन्म ते मरण का मूल है ये जन्म ते मरण का कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान हौमें एहा जात है हौमें कर्म कमाए हौमें एही बंदना फिर जौने पाए। हौमें दा स्वभाव है मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशक चाहे वो कर्म धार्मिक ने चाहे वो कर्म सामाजिक ने चाहे वो कर्म राजनैतिक ने अहं मूल है अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है जन्म मरण का कारण बनता है और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत ही लंबी यात्रा विच पा देता है बहुत लंबे गेड़ विच पा देता है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर रहे हैं हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा हे पाप आत्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं जैसे असी वेखदे हां हाथी विच कामरोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्टि रोग मच्छी विच रसना दा रोग और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग होने रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस कीना दृष्टि रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गहे कुरंगा हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन का कारण बनते ने ये रोग दुख का कारण बनते ने और मनुख दे सारे दुखों का मूल कारण अहं अहंकार अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है किधरे सूक्ष्म रूप किधरे पदार्थां दा अहंकार किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उसका अहंकार किधरे इस जीवन दा अहंकार किधरे उस परम जीवन दी प्राप्ति दे जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है जोवन जवानी स्वपन दे आधार ते खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इसके आधार ते खड़ा होंदा है। जोवन धन प्रभ ताकै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल दी तरह घूम रहा है। जोबन दी मस्ती रिच, धन दी मस्ती रिच और सता दी मस्ती रिच। धन जेब रिच होवे या मन दी सोचनी रिच होवे, जोबन वंत होवे या जोबन दी चाह मन रिच होवे, सताधारी होवे या सता का चिंतन अंदर चलता होवे, दोहां हालत पागल हो जाता है। सता पागल कर देती है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जोबन पागल पन की सीमा तक ले जाता है, पर जोबन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब देच है, धन घर देच है या धन सोचां देच है, विचारां देच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तदि पातशाह फरमान कर रहे हैं, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप नु महान समझदा है, दूसरे नु तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नू महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल दे खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीनम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल विच तू अपने आप नु आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिया जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनों एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म, मैंने ये दर्श पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान भी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान, इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है, और कई गुणा उस तो वध अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल देश नहीं और ए अहंकार मूर्खता से खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान भी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं,

0: सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे कि सारे भूल के पागल हुए फिर देने कौन हम बड कव मैं बहुत वड्डा कवि मैं बहुत वड्डा कवि मेरी कविता महान बस यही जहालत ले फिर दी है कुलीन हम पंडित मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा मैं पंडित इस वास्ते मैं महान हम बड कव कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कवे नानासी मैं बहुत वड्डा सूरवीर मैं बहुत वड्डा दानी कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है क्योंकि अवगुणा दे आसरे ते अहंकार नू अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा एक गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदे आया भी अहंकार विच जलदा है पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता उसनों इतना बोझल नहीं करता एक गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है अवगुणा ते खड़ा है नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करन इक ना नाद ना बेद इकद नू न किसी प्रकार की विद्या न संगीत दा ज्ञान गे रस रस कस ना जानन इक ना सुरत ना सिद्ध अक्कल सिर अखर का भयो ना लहन अक्षर दा कोई बोध नहीं अकल दे तल ते जी नहीं रहा संगीत दा कोई बोध नहीं किसे धर्म ग्रंथ दा कोई ज्ञान नहीं लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल घर जो बिन गुण गर्व करन असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी कर देने पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा और अहंकारी दिया अखां अहंकारी दा मस्तक अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप देच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेढ़े अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन सब मैनू ही देखन चलत कत टेढ़े टेढ़े अस्त चरम बिस्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेड़े तू है कि हड्डियां हड्डियां देते चढ़े होया मांस मांस देते चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी और किया तू हड्डियां दा मान जोबन जवानी दा मान हड्डियां दा मान मांस दा मान मिंज दा मान और खलड़ी दा मान इस तो अलावा और है कि एक आया कि इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती। और इस काया का अहंकार धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर देने, कर्पूर बहुत सुगंधा पर्श मानक देहं मलिनं मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञान नड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां फुल्ला जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदियां स्पर्श करदियां मैलियां हो जांदियां ने, मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञान नड़ो। है कि दुर्गंध खून मिंड मास कलड़ी। अज्ञानी एवं तन का अहंकार करता है, जो बंदा अहंकार करता है फिर धन का अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जा सब किस तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने धन कितने, उस दे वसाहिल नाली सब कुछ प्राप्त होता है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उसकी देन है, ये दिमाग उसकी देन है, और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन इकट्ठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता, इसका अहंकार अगां चलिए ता अहंकार नु बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिए है। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लिए बनाई है, बनाई जाता है, बनाई जाता है, बनाई जाता है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के कोई प्रसन्न बड़ा होता है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो माण मिलता है, वो माण इस दे अहंकार नु होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया, हुण त्याग दा अहंकार। सता कोल है सता दा अहंकार, सता दा त्याग कर देता है हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखण नूं मिलदा है, पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा। जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार बिठाने लिए बनाने अहंकार बैठ जाता है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राहीं रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने, अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, और कई दफा अहंकार
1: इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है ओदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार। दावा कीता सी हरनाथ कृष्ण ने, मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा। दावा कीता सी नमरूद ने, मैं हाँ खुदा, कौन होंदा है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा, किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी का सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं। सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाने की कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां दा मरकज बन जावा, केंद्र बन जावा, हर एक दी निगाह मेरे ते टिक है और हर एक दा मान मैं हो जावा, मेरे ते मान करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भाज दौड़ अहंकार दिए। इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है, तू है, तू है, तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हां, मैं हां, मैं हां, मैं हां, मैं हां। एक जन्म मरण का कारण बन जाती है, तू है, तू है, तू है। एक जन्म मरण नु मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है, बूंद सागर विच लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते हैं

जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू है, तू है, तू है। इस वृत्ति ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। तू है, तू है, तू है, इसने भगवान का रूप बना देता। मैं हा, मैं हा, मैं हा, ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम देख, जिदिया सारिया क्रियावां देख भगवती प्रदर्शित, भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। जब मैं सी तू नहीं सी, हूं तू है मैं नहीं। कि तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज की बाणी का फरमान, हौ में नावे नाल विरोध है, दोए न वसे इक ठाए। ते मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी की सारी साधना है मैं हां, मैं हां, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू हासिल है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। उठे मैं भी कोई चिंगारी नहीं रहती जिस विच गुण भस्म हो जाते ने। बस तू ही, तू ही, तू ही। एक आलम का कहना है, अज राह चनार, अज राह चोनार, कि सलामत न कुनद। इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकर के ना चल। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना हो। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना खुआनद और इमामद न कुनद। ये किधरे इबादत करनू तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़ने आ मस्जिद दे च भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरों दे च भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने कि प्रधान ते परमात्मा है, या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान। जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया है, मस्तक दा तिलक ते फिर वही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक देते असवार होके बैठा है, शायद उसनू मखलूक दे कदमा दे भी जो है ठा ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठण की कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही होंदे। सारी राजनीति, सारी सता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठता है। कई दफा सिर हिल जाने ने ये थले गिरदा है। इस वास्ते कहंदे ना, गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगों के सिर झुकाना चाहता है, एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है। अहंकारी
ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਿਠਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਬਰਤੇ ਅਰਦਾਨ ਕਰ।

सारी धार्मिक साधना हाथी का इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नो अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण का कारण बनता है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण का मूल है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा नितरं तजन्त सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्थिरने। यह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने की तेनू जाच नहीं। अहंकारी के मुंह ना निकलता है, अहंकारी हां नहीं कर सकता। जब सारा माहौल ही ऐसा होए और हां कहने की सहूलियत भी हो, कुछ बिगड़ना भी ना हो, हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होए उतने जबान पे आ जाता है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाली वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है, ना ना ना। हां कहना ही भुल गया, हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत आंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दिती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, ता भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला गई है, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्तीरने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्तार आंदा है, इसे दुश्मनी बढ़ते है। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहते ने, दरख्ते दोस्ती बनिशां के कामे दिल बबारा रद निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारा रद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जे तो खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनू अज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सूल तो इस बूटे नू होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नू मित्र बना लैंदा है। सबको उम्मीद हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नू उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नू, जड़ चेतन सबनू अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है,
दुनिया बड़ी वड्डी है, सारियां नूं मित्र बनाया, आखिर किस तरीके नाल? गुरबाणी ढंग दसदी है, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब वाद। जद उस एक नूं सज्जन बना लैंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है, अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जांदी है, जीवन धन हो जांदा है। कहिंदे मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है, दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ जो कहिंदे गलियां दे कख भी वैरी ने, पर स्वर्ग दे चो ने जिन्हां ने शैतान नूं भी मित्र बना लिया, दुष्टां नूं भी मित्र बना लिया। सब मित्र सबको उम्मीद हम आपन की ना, पर ये युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदे। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर उदारमक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है, एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना साधना विच लीन है, कि साधना सारी सिर्फ अहंकार नु मारन वास्ते है, और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलदा है, और जैसे निरंकार प्रगट होंदा है जन्म मरण मिट जांदा है। सरा साधना विच लीन ये योगी ये संत। एक राजा आया दर्शना लई तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई, बहुत तपीश्वर है, बहुत जपीश्वर है, बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया है, दर्शन कर राजा प्रसन्न होया है। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़त पोशाक चोला भेंट कीता। पानी साधु कहन लगा हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड़ दिता है, असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण कर रहे हैं। पर राजा कहन लगा आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आप दे दर्शन करा, ये नजराना है, ये भेंट है, चलो नहीं पाना आप रख लो दे देना किसे नूं। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिना बाद इस त्यागी वैरागी साधु दा एक मित्र, बूढ़ा मित्र, बचपन का दोस्त, और वो भी साधु से, वो भी तपस्या कर रहा से, मिलन ले आया है। लालबन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल विच संत दी कुटिया कोल पहुंचे हैं। दूरों वेख इस संत ने स्वागत कीता है और सत्कार मान नाल बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो दीक्षा तो भोजन आया सी वो छकाया है। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करदिया बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई 3 घरां दे जाना है नाल दे पिंड, उन्होंने अपने घरां दे चरण पाण लई बुलाया है। ये बैरागी साधु आए हुए मेहमान मित्र नूं कहिंदा है वी इत्थे कल्लियां बैठे हां तुसी तंग हो जाओगे, आओ मेरे नाल चलो, मैं 3 घरां विच जाना है, तुसी मेरे नाल चलो,
फिर वापस आ जाते हैं। इस बैरागी साधु ने वो जो राजे ने कीमती चोला दिता सी मोतियां नाल जड़त बड़ा खूबसूरत वो कट के दिता और आखे ए पा लो कस्बे के चले हाँ तुसी पा लो। वो साधु कुछ बेनियाज ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख हरक सोग तो उच्चा मनुख पहन लिया उसने वो चोला कीमती चोला जैसे दोवे कस्बे के अंदर दाखिल होते ने सारिया की निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है कल तक मैं जब इस कस्बे विच आउंदा सी सारिया दियां निगाहां मेरे ते अज ये निगाहां फिर गई ने अज ते मेरे मित्र ते चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है ये तो मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है सारे इसनू पे वेखदे ने खैस जिस घर विच जाना सी गए आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछिया उस बैरागी साधु तो ये जो नाल आए ने ये कौन ने क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनू वेख रहे ने सोना चोला पहने होया है मुखड़े ते शांति झलक दी है निर्माणता बिखर दी है रहस बिस्मात अखां दे विच है तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने पुछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने दुख तो के कहिंदा है मेरे मित्र ने कल आए सन मेरे बचपन के दोस्त ने साधु ने साधना करदे ने बड़े ज्ञानी ने जपीश्वर ने कपीश्वर ने पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा लेकिन अहंकार उबल पिया बुलवा दिता अहंकार ने मेरा है चोला मेरा है। खैर जब इस घर तो रुखसत होए उस मेहमान साधु ने कहा मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा किया चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे कोई इस तरह तारुफ कराई दा है। खैर माफी मंगण लग पया कह लगा नहीं अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए तुसी बुरा ना मनाओ बुरा ना मनाओ दूसरे घर गए दूसरे घर वाले की भी निगाह इस साधु पे अखां विच रमज है बिस्मात है चेहरे की शांति है और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं इतना कीमती चोला इतना सुंदर चोला तो दूसरे घर वाले ने भी यही पूछे संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने ये कौन ने तो एकदम बोल पे मेरे बचपन के दोस्त ने बाल सखा ने और साधु ने तपस्या करने ने ज्ञानी ने रह गई इस चोले की गल ये चोला मेरा नहीं है मेरा नहीं है इस दे ची वो कह गया है मेरा है मेरा है मेरा है।
خیر اس گھر تو جیوں نکلے یہ بیراگی سادھو پھر معافی منگدا ہے مترا مینو اس طرح بھی نہیں کہنا چاہیے سی پر نکل گئی ہے گل تو سہن کر لے برداشت کر لے ہوں میں نہیں کہاں گا تیسرے گھر گئے آؤ بھگت ہوئی بٹھائے گئے پر وہ چولا تیسرے گھر دے بھی سارے منکھان پربھاوت کر رہے ہیں نر ناری بچے سب پربھاوت اسے سادھو نو دیکھ رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں سنت جی یہ نام کون آئے نے یہ کہڑے سنت نے تو ہوں تعارف کراندا ہے میرے بال سکھا متر نے جپیشور نے تپیشور نے گیانی پرش نے پر رہ گئی نہ کپڑے دی گل اس چولے دی میں اس دی گل نہیں کرنے نہ گل کر کے بھی کر گیا جد اس تیسرے گھر تو رخصت ہوئے کٹیا چ پہنچے اس مہمان سادھو نے اس دوست سادھو نے چولا اتار کے اگے رکھ دیتا آخیا تین دفعہ تو ننگا کیتا ہے اے لے اپنا چولا ہوں چوتھی دفعہ میں آپ ہی اتار دینا تین دفعہ تو اتروایا ہے تین دفعہ تو لگن کیتا ہے اہنکاری اپنے متر دا بھی مان سنمان برداشت نہیں کر سکتا اہنکاری اپنے گرو دی مہانتا بھی برداشت نہیں کر سکے گا وہ متر نو چھپائے گا ماں باپ گروان نے تے انہاں نو پچھے سٹے گا ودیا گرو ہے یا ادھیاتم گرو ہے اس نو بھی ہنکاری چھپان دی کوشش کرے گا پچھے سٹے گا مہاراج دی بانی بڑا سندر فرمان کر دیے جو گرو گوپے اپنا تے نر برے آری یہ بڑے برے پرش ہوندے نے ہنکاری گرو نو بھی چھپاندے نے کیوں پھر میری میں میرا وڈپنا پھر کتھے تے متر نو چھپاندے نے پتر نو چھپاندے نے اگر گنوان ہے ماں باپ نو پچھے سٹتے ہیں صرف اپنے آپ نو ہی اگے کرنا انہاں دی زندگی دا لکش ہے اور یتن کوشش اے بھی ہوندی ہے رب نو بھی پچھے سٹیے پرماتما نو بھی پچھے سٹیے اور ناقش نے پچھے سٹن دی کوشش کی تھی سی نمرود نے کہہ دیتا سی کون ہوندا ہے خدا میں خود خدا ہوں تو اہنکار اپنے تو وڈا کسے نو بھی نہیں من سکتا اہنکار جیندا ہے میں آشرت تو تے بالکل بھول جاندا ہے ایک اردو شاعر نے بڑی سندر نظم لکھی ہے بکری دے بول نو اگے کر کے تے بکری دا بول ہے میں اسے نو آدھار بنا کے اس شاعر نے بڑی سندر کلپنا کیتی ہے فخر بکرے نے کیا بس میرے سوا کوئی نہیں

गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकते मैं

लिए आंध्रा रह गया, सुरदतियां गया, बाकी तो सब कुछ कम आ गया, खल कम आ गई, मांस कम आ गया, हड्डियां भी पिस गई कम विच वर्दियां, केवल आंद्रा बच गई। ये नदाफ चिक के ले गया जो रूई पिंज देने धुनकी दे नाल, और धुनकी जिहड़ी तंग लाई जाती है वो बकरे की आंत आउंदी है, आंदर आउंदी है। ले गया नदाफ से धुन की बनाने के लिए, ये आंदरा ही रह गई सब।

अनदा फुसे धुन की बनाने के लिए जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत देते हो उस आंत देते नदाफ जोरदार सोटा मारदा बस उस नाली रूई पिंजी जांदी है। जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी मैं के बदले तू ही तू की बस सदा आने लगी। हुन उस आंत विच सोटे की जरब नाल निकल रहा है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। खुशी इतनी कुर्बानी करे साधना करे कि साधना विच लीन मनुखां दी कदमां नूं खाक ते अपने मस्तक नूं रगड़े श्वास श्वास वाहिगुरू वाहिगुरू जपे ताई ये मैं तुम विच बदल दिए जीवन धन धन हो जांदा है महान हो जांदा है। अहंकारी उस तक अपनी करेगा निंदा दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। उसे प्रसन्न होता है अपनी उपमा सुन के उपमा होने लग पी है दूजिया की तीसरे की मित्र की तो हुण इस कोल होंदी है निंदा। निंदा का मतलब की है गल नूं छुटियाना और अक्सर मनुख उसे दी ही निंदा करता है जो किसी गल विच उस नालों अगे होवे गुण विच कला विच ज्ञान विच शील संजम विच या फिर प्रभु दी बंदगी विच या संसारी तल ते लै लो सता विच धन विच स्वपन विच किसी भी पक्ष तो जो अगे है अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता अहंकारी सच नूं सच नहीं कहेगा अहंकारी निंदा करेगा और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है छुपाने की कोशिश करता है घटाने की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी उन्हें भी तपस्या इतनी इतनी परमात्मा उन्हें भी सन्मुख होया है प्रभु सामने होया है लेकिन अहंकारी ब्राह्मणा ने

0: मार के मंदिर चौकड़े है और मंदिर दे पिछवाड़े बिठा देता है। मारे है कड़े है ये बेचारा मंदिर दे पीछे बैठ गया। पहले थे मूर्ति दे सन्मुख सी, मूर्ति नामदेव दे सन्मुख सी, पर हुण पीछे। पातशाह दी बाणी कहंदी है अहंकारियां निंदकां पिछ गए नामदेव मुख लाया। अहंकारी निंदक होंदा है और निंदक ते अहंकारी दी तरफ परमात्मा दी हमेशा पिट होंदी है। जो गुणा दी सिख तो सलाह करदा है वो तो परमात्मा दी सिख तो सलाह करदा है। गुण किसे मनुख दे च भी प्रगट होए ने तो गुण ते सारे परमात्मा दे ने। गुणा दी तारीफ परमात्मा दी तारीफ है पर वो ते निंदा करदा है, गुणा दी निंदा करदा है क्योंकि अहंकारी है तो परमात्मा दी पिट हो जाती उसकी तरफ। और जिस मनुख दी तरफ परमात्मा दी पिट हो गई है सब दी पिट हो जाती है। और अहंकारी बहुत दुखां दे दलदल दे जाके फसदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन प्रमाण करते ने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे ऐ अहंकार तेरे करके ते जीव जमदे ने मरदे ने आंदे ने जांदे ने दुख भोगदे ने सुख भोगदे ने थक जांदे ने टुट जांदे ने। ऐ अहंकार तूते तोड़ के रख देना कईयां नूं भ्रम भयान उदयान रमण महाबिकट असाद रोगणे। ये बड़ा असाद रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान विच कोई रमण कर रहा हुए है भ्रमण कर रहा हुए। क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते उस तो सब दूर हो जाते हैं और अहंकारी कल्ला रह जाता है। और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान विच भयानक जंगल विच मनुख तनहा रह गया हुए। असाध रोग है। किसी वैद्य को इसकी दवाई नहीं है कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनान के हर हर हरे। है वेद है हकीम कौन परमात्मा तेरी दवाई है उसके कोल बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी किधरों बारों नहीं लबनी। ये दवाई भी अंदर पई है इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है। होने दीर्घ रोग है दारू भी इस ना है। पर इसका ये मतलब नहीं दारू नहीं है। अहंकार अंदर है औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है हूं जी किधरे अंदरों निकले तू ये औषधि होगी। मैं ये रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने। इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा। मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है, तू है, तू है, कुछ भी नहीं मेरा। मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। ईग तेरा तेरा है, ये भी अंदरों निकलेगा। और ईग मेरा मेरा है, ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज का ये फरमान, ये वाक प्रेरणा दे रहा है। ये रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है। तू उस औषधि का सेवन कर। कह सब कुछ तू ही है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु तू ही है। जितना कहता जाएगा उतना मैं मिटता जाएगा। और जैसे अहंकार पूर्ण तौर पर मिटेगा, वैसे निरंकार पूर्ण तौर पर प्रकट हो जाएगा। और तू निरंकार का रूप हो जाएगा, ईश्वर का रूप हो जाएगा। गुरु कृपा जय नरको कीनी, ते ए जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। इस तरह तू प्रभु का रूप हो जाए।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: 1746 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए। कहिंदे ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं। डर तां उदो है जदों वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए, सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है, पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा। ऐ मिनसान तू वजूद विच तां आया है कि परमात्मा दी इबादत करें, परमात्मा दी बंदगी करें। जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें आसमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटने, बंदगी करके ही जिंदगी है। जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा, वगर ने जो के चुनी आमदन नाबूद मरा। जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं, क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जे, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती कीती ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचो पुछ लईए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्हां ने विच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरां जे सह प्रीत ना जाए। फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए, के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए, साई नू नेह करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष दी कली जवानी ही नहीं जोबन विच नहीं, वो ता अपने बचपन तो ही रब नू इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहब अजे बचपना है ते कुरान उन्हां नू जबानी कंठ हो गई है। अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने। आखर वो कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचों भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया। क्यों? अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी, आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन। ते हकीकत एवे असी कहांगे मिट्टी मिठी हो गई, जमीन ते मिट्टी मिठी नहीं होई, असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिठी हो गई। उस महापुरुष वो आप शक्कर गंज है, शक्कर दे खजाने ने। उस महापुरुष ने क्या कहन लगे, जोबन चला जाए प्रीत तो बिना, जवानी चली जाए प्यार तो बिना, जिंदगी दा समा निकल जाए प्रीत तो बिना, ते ए अंदर नू दुख पासदा है। केवल जोबन नहीं अपने अंतले समय भी ओ महापुरुष रब दी इबादत भी जुड़िया है, खुदा दी इबादत भी जुड़िया है। ते जदो नमाज अदा पे करदे ने अचनचेत गशी पई है, बेहोश होके जमीन ते गिर गए, सजदा पूरी तरह कर ना सके। मुरीदा ने बाबा फरीद साहब जी नू संभालिया, संभालन तो बाद उन्होंने बाबा जी दू जदो तलियां पैरां दियां चशियां, उन्होंने खत पकड़ के खत पैर कुटे नपे ते उठ के बैठ गए। ते पहला प्रश्न सी उस महापुरुष ठीक है, कहन लगे नमाज अदा हो गई, मेरा नेम निभ गया, बंदगी वाला समा सही सफल हो गया। बैठे हुए मरीद ने क्या बाबा साहेब नमाज पूरी तौर ते अदा ना हो सकी पूर्ण तौर ते, आप इको दम जमीन ते डिग पे।

0: अंदर हमारी सरकार आ गई। 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई। 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musa baby, yeah,
2: Mercy.

500 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। आके इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट, पेशेंस